फेको का विभिन्न होम अप्लायंस खरीदमा क्याशब्याक तथा स्योर शॉट गिफ्ट्स, वाशिंग मशीनमा 6 केजी एरियल मैजिक, डिशवाशरमा वाशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनरमा इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवनमा प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

नया वर्ष को अवसर में सेंसेई का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक पनि र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

एप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक, डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: को पैसा सीधे खल्ती वॉलेट मा।
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता मा वा 45,000 भन्दा बढी IME काउंटर मार्फत
0: आफन्त को हाथ हाथ मा पुर्याउन IME गरौं।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास IME गरौं।

0: samu gama gasa ni sa ni dasa gama dama gama dani dama samu
1: hari sarana म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1 हरि शरण म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1

0: कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा
1: रेडियो एनआरएन 99.1

0: Radio N Aryan 99.1
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना मा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महिना का लागि मात्र 3300 रुपैयामा

Willing Go Festivity Offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps Internet और Net TV साथ में Dual Band Router Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set-Top Box मात्र रु 1200 प्रति महीना में सर्थ हरु लागू होने चाहिए। छिटो बने गई Willing Go Festivity Offer।